गौड़ी पूर्वी महला पंजेवा करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औत कटे दिन सुरै नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए पी आवै इहो रस अकथ कथा दिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे।

जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे।

की कहल थाई पई जिनहार नाम ते आवा नाम ते आवा जिन नानक सत गुर पूजया तिनहार पूजक पूज करावा जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान राम राजे विसर नाही दातार विसर नाही दातार अपना नाम देहो अपना नाम देहो अपना

विच धातु पंच आप पावै जन नानक सतगुर मिले आपे हर आपे झगर चुकावै हर आपे पंच तत् विस्थारा विच धातु पंच आप पावै।

जे तिस गुण कोए करे। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोह न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश।

हो ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सा लाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा।

चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावै इंद इंदासन बैठे देवत्या अंदर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रत्नो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावै जोध महाबल सूरा गावै खानी चारे गावै खंड मंडल वरपंडा कर कर रखे तारे सेई तुदनो गावै जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की कर विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तसाया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साद संजोग विजोग दो कार चलावै लेखे आवै भाग आदेश तसाया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ओना नदर न आवै बहुताए हो विडान आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बहु लख होहे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आख

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छपै छंद त्वा प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अम तोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गण जय।

अनटुट भंडार अन ठट अपार अढ़ीठ धर्म अत ढीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंद त्वा प्रसाद। करुणालया है अरकालया है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है।

करुणाकर हैं, विश्वंभर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मांड से हैं, खलखंड से हैं, परते पर हैं, करुणा कर हैं, अजपा जप हैं, अथपा थप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं, अमृता अमृत हैं, करुणा कृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, धरणी तृत हैं, अमृतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता अमृत हैं, नरनायक हैं, खालकायक हैं, विश्वंबर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, भावपंजन है, अर्घंजन है, रिपतापन है, जब जापन है, अकलंकृत हैं, कर्ता अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्म वस हैं, जस के जस हैं, भुजांग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो भांक भांके, अभंगी

देश को देख रहे हो मत, को न देखिए तो प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा होते एक रति बिन एक रति के। माते मतंग जरे जर संग, अनूप तंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली विद न्यावत शीस न जात विचारे, एते पय तो कहां पय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे, जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे, भूत पवैख पवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे, श्रीपत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे।

हजार कु देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सुना दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े वरे यार अब चारे सार की तार पछैया तोर तो देश मलेंद मवासन माते के जान के मान मलैया घाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिरनायक जाचिक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनेंद ने साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सवैव लोग चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सच्ची पात अंत फसे जम फास फरेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर न दे तरेंगे कहा पय जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिर लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साज कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरयो सर काहू ले लिंग घरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में है काहू पछा को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पस को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कव्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबे तुम का वह आप हाथ दे मोहे बचाव सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब वैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिय हुजो सदा हमारे पच्छा श्रीअस्तो जजू करियो रच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा

दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तन कमै हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह छुअ सके न कोई। एक बार

की लाज अस गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया, शब्दो ता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सत

उपजै विण सहजै सहसा न जाए न जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोवो।

संसार ब्रह्म सुत्ता सुत्या रहण विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हरमन वस्या बोले अमृत वाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे जागत रहण विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है एवड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे ओसनो क्यों पोहे न सकी।

आप जी ने अमृत वेले संगत नु खुले दीदार बख्श के निवाजिया है। कोटान कोट शुक्र है आप जी के हजूर। अमृत वेले दिया पांच बाणिया दा नितनेम होया है। बाणी पढ़दिया सेवा निभाउंदिया होईयां बेअंत प्रकार दिया भुल्लां दी मुआफी बख्शनी, अगे तो सुमत बख्शिश करनी,

खेद करह अर बहुत संताव है, आयो शरण तुहारे। कर कर हारे हो अनक बहु पाती,

जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा वेसा हो सतनाम। श्री वाहे गुरु साहिब जी बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना।

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम नु सुनना करना जियो। नाभ चक्कर ते सुन सकते हो, हिरदा चक्कर जिते दिल दी धड़कन उत्थे सुन सकते हो, कंठ चक्कर जिते गले चो आवाज आती है उत्थे सुन सकते हो। किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं लेके जाना जियो। जिन्हां गुरमुखां नू शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जियो। नेत्र कृपा करके बंद रखने जियो।

दुख दार सुख रोग भया जा सुखता ना होई, तू करता करना मैं ना ही जा हो करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात मह जोत जोत मह जाता है, काल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत स्वल जिन कीती।

0: असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम कोर,
1: असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे,
0: असंख कुड़िया कुड़े फिराए, असंख मलेश मल पक खाहे,
1: असंख निंदक

0: केते राग परिस्यों कहियन केते गावन हारे
1: गावे तुमनो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म द्वारे
0: गावे चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे
1: गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे
0: गावे इंद इंदासन बैठे दे

0: जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मनसोर
1: जोर न सुट्टी ज्ञान विचार जोर न जुक्ति छुटै संसार
0: जैस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए
1: राती रुती थेती वार पवन पानी अग्नि पाताल
0: तिस विच धरती था।

0: ना हे मरहै न ठाके जाहे जिनके राम वसै मन माहे
1: भक्त वसै के लोग
0: सच खंड वसै।

0: न सत्रह न मित्र न परम न पित्र
1: न जन्म न जाए
0: न चित्र न मित्र परे है पवित्र भगवती संत प्रसाद कथते के अछिज देश के अपिज पिस
1: के
0: अपिज लोक के अधित शोक
1: के विभूत करना
0: के राजन।

0: अन गन प्रणाम मन मन सलाम अनुभव अनास मन मन प्रकाश
1: गन प्रणाम जल थल मदाम
0: अनशेज अंग आसन अपंग
1: महापारगत मित उदार
0: जल थल अमंड दस विष अपंड
1: जल थल अमंड दस विष व्यंत
0: अनुभव अनास तीर्थ तरत रास
1: अजान भाव एक आस दाहो
0: ओंकार आद कथनी अनास
1: खंड ख्याल गुरुभर अकाल
0: कर कर प्रणाम चित चरणना
1: अनशिष्ट गात अनशिष्ट ना बात
0: अनचंज गात अनरंज बात
1: अनट भंडार अनठट भंडार
0: अडीठ धर्म अत चीठ कर्म
1: अनंत दाता महंत
0: हर बोल मन शंत प्रसाद करनालया है अर कालया है खल खंडन मैं मंडन है
1: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सब कारण है
0: तर्त के तरण है जग के कर्ण है मन मान्या है जग जान्या है
1: सर्व पर है सर्व

0: स्वयंबर है करनालिया है नृप नायक है सर्व पायक है
1: पंचन है गंजन है नृप तापन है जब जापन है
0: अकलन कृत है सर्वा कृत है।

0: फिर बोलो वाहे गुरु जी का
1: खालसा
0: वाहे गुरु जी की
1: फतेह।
0: सारे बच्चे खड़े हो लो, खड़े होके रिलैक्स हो जी 2 मिनट लई।

0: मोहबत कियो।
1: खट खट के अंतर की जानत,
0: भले भले की पीर पछानत।
1: चीटी ते कुंच रस थूला,
0: सब कृपा दृष्ट कर फूला।
1: संतन दुख पाए ते दुखी,
0: सुख पाए साधन के सुखी।
1: एक एक की पीर पछान,
0: कट कट के पट पट की जान।
1: जब उद करा करता।

0: जे रज से तजकीनी कहूं फूल राजा हो बैठा सगरी शिष्ट दिखाए अचंप अवरक्षा मेरी तुम करो दुश्चित उठवा तो उत्पाता जे अज तो तब सरणी परे पुरख जमन पग परे तिहारे
1: तुम शंकर सब टारे
0: जो कल को एक बार त्याय है रक्षा ते सब काला कृपा दृष्ट तन।

0: तू जाने है।
1: जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख बखाने
0: सब तू है जिन जंत तो पाया
1: कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया।

0: अनंत न मिलया जिन हर आपे पण।
1: कहे नानक हरास मेरी मन हुआ बंजारा।
0: हे रसमा तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए।
1: प्यास न जाए होर तत जिचर हर रस पल्लै न पाए।
0: हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुत न तृष्णा लागे आए।
1: ए हर रस करनी पाया सतगुरु मिले जे आए।
0: कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए।
1: सरीरा मेरिया हर तुम मैं ज्योत करी तू जग में आया।
0: हर ज्योत रखी तुद विच तां तू जग में आया।
1: हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया।
0: हर प्रसादी बुझिया तां चलत होवा चलत नदरी आया।
1: कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया ज्योत रखी तां तू जग में आया।
0: मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया।
1: हर गाओ मंगल नच सखिया सोख दुख ना व्यापे।
0: गुर चरण रागे दिन सुभागे अपना प्रजा पे।
1: अनहद बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो।
0: कहे नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो।
1: ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया।
0: के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया।
1: जिन्हा तेरा रचन रचा सो हर मन में वसाया।
0: गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया।
1: कहे नानक ए शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चित लाया।
0: ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह ज्योत धरी हर बिन अवर न देखो कोई।
1: हर बिन अवर न देखो कोई नजर हर निहालिया।
0: ए विश संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया।
1: गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न देखो कोई।
0: कहे नानक हे नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिव दृष्ट होई।
1: ए सबनो मेरे हो सचै सुनै नो पठाए।
0: सचै सुनै नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी।
1: जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समानी।
0: सच अलख बढ़ाणी तां की गत कही न जाए।
1: कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो सचै सुनै नो पठाए।
0: हर जियो गुफा अंदर रख कै वाज।

जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक ले त्याय। फिर अंगद करते अमरदास रामदास होय सहाय। अजर हर गोबिंद नो सुमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठ है सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदावताय। सब थाए होय सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाए हुए सहाय। दसवें पातशाह दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पाठ दी दादा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौह साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाही देख वाही देख के अंडर कीता तिन्हां प्यारे सचारे दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लहाईयां चरखियां ते चढ़े आए ना चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सासा नाल निभाही तिन्हां प्रार्थना ते वर्तमान समय दी सरबत शहीदा दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचा रियायत देख देख फतेह बेद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बोले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन शरण चौंकी चंटे बुंगे चुको जुग ढाल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पता रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जियो। समूह गुरुद्वारे के धामां दे खुले दर्शन दी दार ते सेवा संभाल करन दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मां नितानियां दे दान न्योटियां दी ओर सचे पिता वाहिगुरु आप जी दे हजूर पंज बाणियां नितिम दी अरदास है जी। आप अज कैंप ते चौथे दिन दी अरदास है जी अते पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी। अखर वादा का टपल चुक माफ करनी सबत दे कार जास करनी।

ओके, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. कीर्तन क्लास इज नाउ डन. यू गाइज आर गोइंग आउटसाइड टू द आर्ट टेंट नेक्स्ट, सो यू गाइज कैन पुट ऑन योर शूज एंड हेड आउटसाइड.

सो एक आखिरी बेनती सी, अमृत संचार होवेगा शनिवार जुलाई 5 नू, सो 5 जुलाई नू अमृत संचार कैंप की समाप्ति ले होवेगा। होर जानकारी वास्ते सी ईमेल राही ए मैसेज भेजांगे। सो फॉर ऑल द किड्स, नो टॉकिंग इन दरबार, वी आर स्टिल गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग टू गिव आउट टिकट्स, बट प्लीज लिसन टू द कीर्तन। सो हुण रागी संगत नूं बेनती करांगे, संगत नूं कीर्तन श्रवण करन।

करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे छरिया। तिन कवन खलावै, कवन चुगावै।

जो सब सह का जानोई जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो ताओ भावै सोई थीसी।

आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल।

पहिला तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंक जो मोह पग नहीं चल हम देखा तह डूबी अले मन एक ना चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ।

पाऊ सेवक सिखे हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ द मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हुजो सदा हमारे पछा श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता

श्रेष्ठ सब धारै। आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम। जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निरिबकार निरलंभ। आदि अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचार।

जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप आपुनी बुद्ध है जिति, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया धुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे अनद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वे सूरे

मुख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो।